0: could be the envy of your office. It's 7HOFM's $20,000 Workspace Invaders.
1: Winner number two, Aston from Carper Choice Kingston.
2: Oh, here she is. 5K.
3: $5,000. I'm all shaky.
2: So, do you listen to us all the time? Got the radio on?
4: We've always got it on. Yep.
3: Yeah.
2: Oh, that's good.
4: Especially today.
2: It's nice to know that a regular listener's one.
5: Yeah, and I don't usually work Friday, so. Yeah.
3: Oh.
2: You're so lucky that the boss got you to work today.
5: I know. Thanks, Joel.
2: Oh, that's the boss.
3: You're the boss.
2: We love giving away money. We're giving away tons at the moment.
5: Enjoy it too. Thank you.
2: Good on you. Fantastic. On behalf of 7HO and everyone else, well done, Dale.
3: You can have a big prime. I'll give you
0: a 7HOFM's Workspace Invaders. For Reconnect Support Services, award-winning NDIS provider, accepting participants now, and Australian Academic Solutions, practical training for industry needs.
6: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वो नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधान ये उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है सुरक्षा निर्माण यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है आइए और CBD में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिलें और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से नियुक्ति पाएं
7: Just search Australian Academic Solutions.